0: पाया सिखा का चुनैया गुर ब्राह्मण थिया। ओह चढ़ पया बित का गया महला पहले लख चोरियां लख जानियां लख खूनियां लख गा लख ठगियां पहना मिया रात दिन अस जीरा तग कपा कतिया बामण वटे आए को बकरा रिन खाया सब को आखे पाए
1: होए प्राण सुटी।

कोई जित पौ खसम न जाए नानक सेव कांडिया जसेती खसम समाए पौड़ी नानक।

सदा सदा कुर्बाना साहर तेरी उस्तत है जो हर प्रभ पावे जो गुरमुख प्यारा सेवंदे तिन हर फल पावे।

महाराज ने सानू एक बाजी दिती है, खेड जिंदगी दी बाजी। ये मैदान है, इस कुदरत एक मैदान है, आपां खिडारी हाँ सारे। इत्थे जिंदगी दी बाजी जितण वास्ते आए हैं, पर उह तां जित्ती जाएगी जे असी नाम धियावां। इक्को ही तरीका है वह बाजी जितण दा, नाम दी कमाई करनी। नाम दी कमाई करके पहुँच उत्थे तक करनी। खेड है ना, खेड जदों आपां दो खिडारी खेडदे आ, उन्होंने फिर दो टीमां ने की करना, गोल करना हुंदा है। तो जिथे गोल करना है उत्थे तक तो पहुँचना पएगा ना, फिर बाजी जीती जानी है। असी परमेश्वर तक पहुँचना है, जे पहुँच गए फिर तो बाजी जित गए, अगर नहीं पहुँचे तो बाजी हार गए, फिर ये बाजी कच्ची रह गई। सच्ची बाणी इसे लिए दिती सी भी जिंदगी दी बाजी जित, ते जे तू कच्ची बाणी नाल जुड़ गया ते ये खेड कच्ची रह जानी है, फिर तू ये बाजी नहीं जित सकदा। महाराज जी कहिंदे जे बाहरों तू धर्म दा पहरावा पा के धर्मी हो के सारी उम्र घूमदा रह, पर ध्यान रखी जिंदगी दी बाजी इदां नहीं जित्ती जानी। अंदरों मैला है, अंदरों कुचील है, अंदरों अवगणा नाल बुरियाइयां नाल भरिया, ते बाहरों मेरे वर्गा धर्म दा चोला पा के सारी उम्र बाहरों तुरदा रवे, ते मैं कहां मैं बाजी जित गया? नहीं। महाराज जी कहिंदे ने जियो मैले बाहरों, निर्मल बाहरों निर्मल जियो, ता मैले तिनी जन्म जुए हारिया। तू ते हार गया, तू भुलेखा धर्म दे पहरावे दा पा लिया, भी ये धर्म दा पहरावा मेनू जित दवा देगा। महाराज कहिंदे अंदरों तू मैला रह गया, अंदर कामी क्रोधी लोभी हंकारी विकारी, ते की होया? हार गया बाजी, नहीं जित सकिया। जिंदगी दी बाजी जितण लई अवगुण नहीं चाहिए, गुण चाहिए ने। सत संतोख दया धर्म खिमा वाला गुण चाहिए, वह कितों मिलना है? आ गुरबाणी के खजाने चो। जदों ये गल समझ आ गई, असी इत्थे आके कहांगे महाराज मैं हार चुका, हुण तक हार के ही आउंदा रहा, आ अवगुण इत्थे रखण लगा, ते शुभ गुण दे दिओ जिहदे नाल मैं बाजी जित के जावां, जन्म सवार के जावां। पर वाहिगुरु दे दर ते अवगण छड्डण ते गुण ले जाण दी गल्लां किन्ने कु करदे ने, कि वाहिगुरु एक किरपा कर दिओ, सब अवगुण मैं गुण नहीं कोई, क्यों कर कंत मिलावा होई? ते जे मिलावा ही नहीं होया ते बाजी हार गया, फिर मुड़ के पता नहीं बाजी मिलनी है कि नहीं, मुड़ के ये खेड खेडन वास्ते ये समा मिलना है कि नहीं मिलना, फिर दोबारा तैयारी करनी पएगी। जिमें कई बारी जिक्र किया, एक बारी पक्या फल टुट जाए वो दोबारा नहीं जुड़ना, उनू बीज बन के फिर सफर करना पैना है। कई जन्मां तो हारदे हारदे आए हैं, एक मौका दे दिता भी इस जन्म च बाजी जित सकदे, पर करना की पएगा? अवगण छड़ने पैणगे, बुरियाइयां छड़नियां पैणगियां, नेक कर्म करना पएगा, नेक जीवन बनाउणा पएगा, फिर तू ये बाजी जित सकदे। नहीं तो गुरु महाराज जी कहिंदे ने भी ध्यान रख, सच शब्द पछाणो दूर ना जाणो जिन ए रचना राची। तू उदे हुक्म नू पछाण, उदी भाल विच दूर ना भटक, जिन्हें ए सारी रचना जड़ी है वो रची है, ए कुदरत नू जिन्हें बनाया है। नाम ते आए, जे तू उदे नाम नू ध्यावेंगा तां सुख पाए, मन आत्मक तल ते तू सुख पा सकदा है। बिन नाम है पेड़ काची, पेड़ मतलब ये खेड जिंदगी दी, ये कच्ची है, ये बाजी जड़ी तू जितन लई आया ये तेरी बाजी कच्ची रह जाएगी।
तू कुड़ियार रह जाएगा। जे तू चंगे गुण एकत्र कर लवेगा फिर तो यह बाजी तू जिंदगी दी जित सकदा। असी जिस समाज दे विच रहने हैं ना, जिन्हें अपनी जिंदगी दी बाजी हारी है वह दूजियां नू जितन देगा? जिहड़ा आप हारिया होया है वह जितन देगा? वह कहेगा मैं नहीं जितया तो यह कितों जित जाण। अज साढ़े खिडारियों नशे किने लगाते? एक खिडारी तो सी जिन्होंने अपने शरीर नू संभाल के ते बाहर दियां खेडां खेडनियां सी, पर होया कि इन्हां नौजवानां नू नशे लाते ते जिहड़े अंदर नशे लग गए वह कित्थों बाजियां जित लैणगे? अंदरों खोखला करके रख दिता इन्हां नशे दे सौदागरां ने। अज दे खिडारियां दी असी हालत देख रहे हैं ना। हुण ते वैसे भी जिहड़ियां खेडां दे विच साडा शरीर कायम रहिंदा सी उते खेडां हुण अलोप ही हुंदियां जा रही हैं, क्योंकि हुण सानू इंटरनेट ते मोबाइल ते इन्नियां गेमां मिल जांदियां। छोटे जे बच्चे तो लैके बजुर्ग तक देखो सब लगे हुए ने। उहदे नाल की शरीर नू पावर मिल रही है, ताकत मिल रही है, अखां भी जा रही ने ते शरीर भी कमजोर हो रहा है, पर लगे हुए आ। बजुर्गां नू देखो वह भी गेमां च लगे हुए आ। किहड़ियां गेमां? जिहड़ियां सानू मोबाइल दे राहीं दित्तियां ने। दूर दा सफर करना होवे ना ते बंदा गेम ला के बह जांदा मोबाइल ते, कहिंदे क्यों? कहिंदे सौखा हो जाएगा, सिमरन नहीं करना, पाठ नहीं करना। हैगे विरले ने ओ जिहड़े कहिंदे दूर दा सफर है चलो पाठ करदे आ सिमरन करदे आ, पर बहुत वह भी ने कहिंदे चलो आपां गेम लाउने आ खेडां खेडदे आ सफर सौखा हो जाएगा। उन्होंने अपनी जिंदगी दी खेड नहीं समझी। आवन जान एक खेल बनाया, आए हाँ जाना है, पर जदों जाना है हार के नहीं जाना, जदों जाना है जित के जाना है। जिहड़ी टीम आ गई ग्राउंड दे विच वो ये सोच के थोड़ी आई मैं हार के जाना है, वो तो यही सोच के आई है ना मैं जित के जाना है। असी इस दुनिया दे विच आए हाँ पर हार के जाण वास्ते नहीं आए हैं, असी आए हैं जिंदगी दी बाजी जित के ले जाण वास्ते। उहदे लई कोच वधिया चाहिए, वधिया कोच होएगा ना, ट्रेनिंग वधिया देगा, फिर हार नहीं सकदा। असी कोच किनू बनाउणा? धन गुरु ग्रंथ साहिब जी नू। असी किनू बनाउणा? एक छड्डो, इत्थे 35 कोच बैठे ने, 35 कोच बैठे गुरु ग्रंथ साहिब जी दे कोल। एक एक कोल ही कुछ सिख लईए आपां, जे एक एक कोलों भी एक एक गुण आपां सिख लईए तां किन्ने गुण अंदर प्रगट हो जाणगे। मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुर की सिख सुनी। ते जे कोच वधिया है ते टीम भी वधिया है, ते जे कोच माड़ा है ते टीम भी माड़ी है, पर असी उहदे नाल जुड़े हाँ। आप मुकत मुकत करे संसार, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोहे तारे। इस वास्ते महाराज जी समझाउंदे आ वी नाम ते आए तां सुख पाए, बिन नाम है पिड़ काची। महाराज जी कहिंदे मनुखा ये जिहड़ी मनुखा जन्म दी खेड है ना बाजी, ये तेरी कच्ची रह जाएगी। जे तू चाहुने गुरमुख जन्म सवार, दरगाह चलिया फिर नाम नू त्या। ते जे तू नाम तो बिना है नाम तो वंजा है, फिर ध्यान रखी मनमुख चले मूल गवाए। फिर तू अपना मूल गवा लिया, फिर ये बाजी कच्ची रह गई, फिर तू ये जिंदगी दी बाजी जित नहीं सकदा। सतगुरु महाराज जी

थापी जिन्हें इस सृष्टि नू बनाया है, एक कुदरत दी स्थापना कीती है, विद जाने उही ये तरीका विद जानदा है भी ये संसार तो बाजी जित के किदा जानी। जिन्हें बनाई है उन्हू पता ना, रूल उन्हू पता, रूल ते उन्हें बनाए, नियम ते उन्हें बनाया, जिन्हें नियम बनाए उन्हू पुछिए भी ये तुहाडे रूल जिहड़े आ साडे समझ नहीं आउंदे, ते जिन्हों रूल समझ आ गए वह हार नहीं सकता, जिन्हों नियम समझ आ गए वह हार नहीं सकता। असी उदे बनाए हुए रूल विच चलांगे ते जित जांगे, नहीं ते फिर हार जांगे। पर सानू दुनिया दे बनाए हुए रूल जड़े ने उत्थे डर लगदा है, उदे बनाए हुए रूल ते सानू असी कुदरत नाल खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि उदा डर नहीं है ना, उदा भय नहीं है। जे पता होवे भी बलहारी कुदरत वस्या, कुदरत विच वस्या है, जिन्हें एक कुदरत साजी है, सृष्टि बनाई है, उदा भय होएगा ते कुदरत नाल खिलवाड़ नहीं होएगा। ते जे उदा भय नहीं है फिर तो कुदरत नाल खिलवाड़ हो ही रहा है। जिन थापी, गुरु नानक साहब कहिंदे जिन्हें ये सृष्टि रची है, जिन्हों अस उन्हें सानू थापिया, असी उन्हों नहीं थाप सकते। थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। पर उन्हें ये थापी, ये सृष्टि बनाई है, बिद जाने उही जानदा है। जिन बिद जिन थापी बिद जाने सोई, क्या को कहे वखाणे, कोई की आखे ते की वखियान करे, पता ही किसे नू कुछ नहीं है। ते जिन्हें बनाई है उन्हू पता है। जपजी साहब दी बाणी विच ही सारिया बख्शिशा महाराज ने भरतियां। जे आपां कल्ले जपजी साहब दी बाणी समझ लईए ना, ते सानू भटकण दी लोड़ नहीं पएगी। महाराज जी कहिंदे किसे नू पता है उन्हें जदों सृष्टि बनाई सी कदों बनाई सी, कोई है? बड़े चोटी दे विद्वान इस धरती ते होए ने, होए हो रहे ने, ब्रह्म ज्ञानी ने, फिलोसफर ने, साधु ने, संत ने, महात्मा ने, बहुत इस धरती ते आए। पर किसे ने जिक्र कीता कि जदों उन्हें दुनिया बनाई सी ते पहला रुत केड़ी सी? पहला वो रात सी के दिन सी? पता ही नहीं किसे नू। थितवारन जोगी जाने रुत महन, कोई जा करता सिरठी को साजे आपे जाने, सोई किव कर आखां किव सालाही क्यों वरनी किव जाना। ते गुरु नानक साहब तो वड्डा ते कोई नहीं हो सकदा। ते गुरु नानक साहब जी इत्थे जिक्र करदे आ, कहिंदे क्या को कहे वखाणो, कोई किदां वखियान कर सकदा है? जिन्हें ये सृष्टि बनाई है उन्हूं ही पता है, कि जिन्हें जी पैदा कीते कुदरत बनाई उन्हूं ही पता है। इसलिए नाम त्याए तां सुख पाए, जे असी उहदे नाम नूं त्यावांगे तां सुख मिल सकदा।

जिन्हें इस जगत दी स्थापना कीती और एक जाल विछा दिता माया भी खेड खेडनी सौखी नहीं है। वो जड़ियां टीमां मैदान विच खेड़ दियां उन्होंने पुछो किन्ना जोर लगा हुंदा है ते असी कहने जी बाणी पढ़न च किहड़ा जोर लगना है सिमरन करन च किहड़ा जोर लगना है भावें साडे कोलों सारी दिहाड़ी जपा लो सारी दिहाड़ी तुहाडे लई सुख है पर जे एक मन एक चित हो के जपना पै जाए तो दो मिनट भी भारी पै जाने हैं। एक मन एक चित लगन करन लगियां जोर पता किन्ना लगना है। इसलिए जाल विछा दिता मालिक ने भी आ खेड है आ गेम है त्रै गुणी माया दा जाल भी विछा दिता हुण इस जाल चो निकलना है। ते महाराज ने सानू जे नहीं समझ आ रही तो गुरु का आसरा भी देता भी ये सपोर्ट दे दी भी तू गुरु दे राही समझ लै दे नहीं समझ आ रही कि बाजी किदा जितनी है ये जाल विचों किवें निकलना है ये किवें जाल तोड़ना त्रै गुणी माया का तू सतगुरु को आ जा क्योंकि गुरु तो बिना गल समझ नहीं आएगी। गुरबिन घोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवे। उस मालिक ने जदों ये सृष्टि साजी तो सृष्टि साज के फिर की किया त्रै गुणी माया का जाल विछा दिता जिन जग थाप थाप के वताया जालो जाल जड़ा सी अर्थ करन लग्या आपां जाल ते जदों उचारण करना ते उते होड़ा बोल के कि थले औंकड़ भी लगी कई थावां ते लग मात्र असी देखांगे उपर होड़ा लगा हुंदा थले औंकड़ लगी हुंदी है उचारण विच जालो है पर जदों अर्थ करना ते जाल तां महाराज ने औंकड़ लाती। साहब कहिंदे जाल है जिहड़ा वताया वताया मतलब विछाया ये जगत दी रचना करके त्रै गुणी माया दा जाल उन्हें जिहड़ा विछा दिता है। सो साहिब परवाणो उस साहिब नू अपने मन दे विच वसा उहदे अगे जिहड़ा उहदे हुक्म दे विच चलना कर। परवाण दे वी अर्थ गुरबाणी विच वख वख ने जिहड़ा विशा चलदा होएगा परवाण दे अर्थ उसे ढंग नाल करने पैणगे जिवें जपजी साहब दी बाणी च पढ़दे आ अमुल तुल अमुल परवाण उथे परवाण दा अर्थ हो रहा है। परवाण दा अर्थ वैसे हुंदा वी किसे नूं परवान कर लेना कबूल कर लेना मन लेना जां मन्निया परवन्निया पर उथे अर्थ है अमुल तुल तुल कहिंदे आ तोलण उहदी जिहड़ी तोलण वाली तकड़ी है उह वी अमोलक है और जिहड़े उहदे विच तोलण लई वट्टे पाए आ उह वी अमोलक है। उत्थे परवान दा अर्थ असीं वट्टे करांगे वख वख अर्थ ने विशा किहड़ा चल रहा उह देखना जरूरी होएगा। तां महाराज जी कहिंदे ने उह साहिब जिहड़ा ना जिन्हें जगत दी रचना करके त्रै गुणी माया दा जल विछाया उहनू मन उदे हुक्म विच तुर उही तैनू इस त्रै गुणी माया दे जाल विचो कढ सकदा है जां नुकता दे सकदा है जुगती दे सकदा है। जुगती तां दित्ती है ना गुर किरपा जे नर को कीनी तै ए जुगत पछानी नानक लीन भयो गोबिंद सिंह जे पानी ज्यों पानी संग पानी। इसलिए महाराज जी

संसार विच आ गए बहुता खुश ना हो। ये जड़ा तेरा खाना पीना हसना सौना है इत्थे तक ही सीमित ना रह जा, हजे अद विच घर ही पहुंचे हैं, हजे तो अद्धा सफर पिया है तेरा, हजे तो अद च ही पहुंचे हैं, खुश हो ही जाना है, अगले कदम च की पता वापस मुड़ना पै जाए। आया है ना, आके वापस जाने ते महाराज कहिंदे गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया, वो है सफर पूरा। एक दिन कहा सी कि असी पूरे दे गुण गावांगे तां पूरे हाँ, बंदे दा सवास मुक गया ते असी कहिंदे पूरा हो गया, नहीं वो ते अद अद विच घरों मुड़ गया, वो ते पहुंचे ही नहीं मंजिल ते। ते खुश किदे लई होईदा है जिहड़ा मंजिल ते पहुंच जाए, रोंदे किदे लई आ जिहड़ा अद विच घरों मुड़ आवे, ये तो पहुंच ही नहीं सकिया मंजिल ते। कबीर संत मुए क्या रोई है, जो अपने ग्रह जाए रोवो साकत बापरे, जो हट है हाट मनमुख लई रोवो। गुरमुख लई रोण की लोड़ नहीं, गुरमुख तो पहुंच गया मंजिल ते, अपने मनमुख अद विचकार ची मुड़ना पै गया, क्योंकि जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारी है, वारी सबना दी है, गुरमुख दी भी है, पर वो वारी आउन तो पहला पहला अपनी मंजिल ते पहुंच गया। टाइम है ना, वो टाइम दे खत्म होन तो पहला पहला वो पहुंच गया मंजिल ते, ते कईयां दा टाइम अद विचकार ची मुक गया, मुड़ना पै गया। फिर तां गुरु साहब जी समझाउंदे, बाबा देखो किन्ने प्यार नाल समझा रहे, हे भाई सानू ही कह रहे ना सारिआं नूं, हे भाई आया है उठ चलना, तू दुनिया च आया उठ के चलना भी है, ध्यान रखी तू जे कहीं भी मैं इत्थे कब्जा कर लवां, मैं इत्थे मल मार के बह जा, ते जदों उहदा सद्दा आया उहने आपे ही उठा लेना है, उहने फिर आपे ही उठा लेना है, उठ के तैनू चलना पैना है। जदों शरीर विच्चों जिंद चली गई ते चार बंदियां ने शरीर आपे ही चुक लेना है, फिर तू कहे भी मैं ते मल मार के बैठा कब्जा करके बैठा, फिर उत्थे नहीं तेरा जोर चलना। फिर वेखो बंदा चलिया चौं जणियां दे कन्न जदों सदा आ गया। इसलिए महाराज जी समझाउंदे आ कि भाई आया है पर उठ चलना ध्यान रखी, उठ के चलना भी पैना है। अद पंध है संसारो वा, तू हजे पेंडा अद विचकार तक दा तय कीता है, हजे अद्धी मंजिल तो तेरी पई है, एवें माण ना कर, हंकार ना कर, होमे दी बोली ना बोल, हजे तू अद ते पहुंचे है, अद्धा सफर बाकी है, तू ते अद च पहुंच के होमे करन लग पिया, हंकार करन लग पिया, यही तेरे वास्ते रुकावट बन जानी है, ये तेरे वास्ते दीवार बन जानी है, इन्हें तेनू अगे तुरन कोई नहीं देना। इसलिए महाराज सुचेत कर रहे हैं, जगा रहे ने, जागो जागो सुते हो, चलिया बन जारा, तेरे नाल दे किन्ने वापस मुड़ गए, कम से कम उन्हां वल वेख के ही तू होश विच आ जा। अपनी अपनी जिंदगी च मारो झातियां, हुण तक किन्नियां दे संस्कार ते गए हो, हुण तक किन्नियां नूं जांदियां देख लिया, वह मुड़ ही गए ना, ते वारी तां साडी भी आउणी है मुड़न दी, साड़ी भी जान की वारी आनी है, बहुता नहीं तो अपने जदों की होश संभाली है उदों तो गिनती कर लो किन्नियां नूं मैं जांदियां देख लिया, तो जे वह मुड़ गए तो मुड़ना तो मैनू भी पैना ना, वापस जाना तो मैनू भी पैना है, मेरी वारी कदों आ जानी है कोई पता नहीं, क्योंकि नित सदे आ रहे ने, नित सदे घर घर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन, नित सदे आ रहे भी चल भाई वापस जाने का टाइम आ गया, किसी का बचपन च आ गया, किसी का जवानी च आ गया, किसी का बुढ़ेपे च आ गया, इत्थे ते पता ही कोई नहीं है कदों मुड़ना पै जाना है, कदों उहदा हुक्म आ जाना है, फिर उत्थे सलाह मशवरा भी नहीं होना, हाँ भी चलो अगे 2 मीटर तो जाके यू टर्न लेना है, जां 1 किलोमीटर तो 500 मीटर तो, उत्थे तां एक कदम दी
ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟ ਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। ਮਤ ਕੇ ਜਾਪੇ ਸਾਹ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਭਰ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਕਾਹਦਾ, ਹੋਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉੱਠ ਚੱਲਣਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਅੱਧ ਪੰਦੇ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਵਾਰੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀ

करन हदवाजे। आनंद सुनो बट भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल सोरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सची वाणी, संत साजन पये सर से पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र, सतगुर रहे पर पूरे।

सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तर के बोलो जी।

हरिया सिखी के संस्वसन निबाहित नादिक मईदा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारे ध्यान तरके बोलो जी।

अंदर श्री आसादी वार दे शब्द कीर्तन गुरबाणी लड़ीवार कथा विचारा से पौड़िया आनंद साहब जी के पाठ की अरदास है जी। अखरवादा घाटा भूल चुक माफ करनी आप जिया दे दर ते समूह साध संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी तिल फुल पेटावा दर प्रवान करनी यात्रावां सफल करनी

सब परवार चढ़ाया बेड़े जात सुभावे ता हुक्म मनावे इस बेड़े को पार लंगावे अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत आनंद अनंता रंग तमासा पूरन यासा कवहे ना व्यापे चिंता।

संत जन के वश तोरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुरप्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुरप्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुरप्रसाद।

एक ओहकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दशमी प्रथम भगवती समर कैम गुरु नानक लेते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास साहिब ही सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सुमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइए। जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सुमरै करनो निदावे ताए सब थाई।

सर्व सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तार से हरि आयत देख तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी की बोल बाले बोलो जी सिखा।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुर प्रसाद।

आदि एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुर प्रसाद

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ ਕੇਵਲ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗਮੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵਡ ਚੀਰਾ ਰਹਾਓ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਸੱਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੁਦਵਣ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਾ ਹੀ ਠੱਕ ਰਹਾਈਆ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰ ਨਹਾਰਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ ਪੁੱਤ ਭੁੱਖੇ ਖਾਏ ਚਲੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੇ ਨਾਏ ਰਹਾਉ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਆਖ ਥੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਭੋਗ ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ ਜੇ ਵਡਿਆਪ ਤੇ ਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜੈਨੋ ਦੈਨੋ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੀ ਤੇ ਕਮਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਇਸਨਾਥ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਿਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ ਹਰਿਜਨ ਕੇਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਹੀ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀ ਵਾਸ ਜਿਨ ਹਰਿਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿੰਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਖਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਾਨ ਚਿਤਵਹੇ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਓ ਪ੍ਰਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤਿਉ ਪਾਏ ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਓ ਜਨਨ ਬਿਦਾ ਲੋਕ ਸੁਤਵੰਤਾ ਕੋਏ ਨ ਕਿਸਕੀ ਧਰਿਆ ਸਿਰਸੇ ਰਿਜਕ ਸਵਾਹੇ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ
ऊड़े ऊड़या वै सै कुंसा तिस बाछे बचरे छरिया तिन कवण खलावे कवण चुगावे मन में ही सिमरन क्रिया सब निदान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना परव्रया सब निदान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना परव्रया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख नरंजन हर पुरख नरंजन हर गम्मा गम्मा पारा सबतियाँ वहीं तुदजी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जीहां का दातारा हर दया बहो संतो जी सब दुख विसारन हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चो जबडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हां तुद बिन अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेव हैं तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हरतें आवहीं तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पाए जैनो हर ते आया जी तेनो टूटी जमकी फांसी जिन निरपाओ जैना हर निरपाओ ते आया जी तिनका पौ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेंत बेहंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करे हर पूजा जी तप तापहीं जपहीं बयंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमृत शास्त्र जी कर किरिया खटकर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावें मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा तू एको जी तू नेह चल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरत जी तू आपे करहें सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सृज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा तू करता सजया रमेंडा साई जो तो पावे सोई थीसी
जो तू देह सोई हो पाई रहो, सब तेरी तू सबनी ते आया, जिसनों कृपा करें तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मनमुख गवाया, तुदे आ विछोड़िया आ मिलाया, तू दरिया हो सब तुझी माही, तुझ बिन दूजा कोई नाही, जी जन सब तेरा खेल, वियोग मिल विछोड़िया संयोगी मेल, जिसनों तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुदबिन दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नान गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तित सर्व रड़ाए पाईले निवासा, पानी पावक तिन्हे किया, पंकजो मोह पग नहीं चले, हम देख तहें डूबी अले, मान एक न चेतस मूढ़ मना, हर बिसरा तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हो जति सती नहीं पड़या, मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणव नानक तिन की शरना, जैनों तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा, भाई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरा किते ना काम, मेल साध संगत भाजे केवल नाम, स्रंग जाम लाग पवजल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ, जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा, जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन्या हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रख हो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, पातशाही दसवीं, कबियो बाच बेनती चाओ पाई, हमरी करोहा दै रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रत पारा, हमरे दुष्ट सबै तुम काबो हो, आभा दै मोहे बचाव हो, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सबे करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब मैर इनको आज संगरिये, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ते आऊं, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन शत्र हमारे मारी है, आप हाद मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए, हो जो सदा हमारे पच्छा,
सिर्यस्तु जो करी हो रक्षा, राख लियो मुहि रखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बन दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दसकंता, कल पाए ब्रह्मा बपतरा, कल पाए शिवजु अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है तहें हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव देंद जक्षण उपजायो, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी, शिवकन को शिव गुण सुख दियो, शत्रन को पलमो बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चिंटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछन्ने, कट कट के पढ़ पढ़ की जाने, जब उदकर्ख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा, जब आकर्ख कर तुह कब हूँ, तुम मैं मिलत देहे धर सब हूँ, जीते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बोझ उचारे, तुम सब ही ते रहित नरालम, जानत बेद भेद अर आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिर अनाद संभ, तका मूढ़ उचारत पिदा, जाको पेव न पावत बिदा, तको कृपाहुण अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदा शिव, रंकार का चीनत न पिव, आप अपनी बुध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तो है तेती, तुमरा लखा न जय पसारा, किह बिद सजा प्रथम संसारा, एक रूप में अनुपस रूपा, रंक पयो राव कहीं पूपा, अंड जेर से तज कीनी, पुतपज खान बहर रच दीनी, कहो फूल राजा हवै बैठा, कहो सिमट भयो शंकर अकेठा, सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव, आ जुगाय स्रूप स्वयं भव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखियो बारे असिख संघरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रण गाता, जे आस तो जे तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवाय मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सवटारे, जो कल को इक बार ते है, ताकि काल निकट नह है, रक्षा हुई ताही सब कला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्कला, कृपा दृष्ट तन जाहे न हरे हो, ताकि ताप तनक मैं हरे हो, रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शहा शवाय सके न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा,
काल फांसती तहें ओबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख तेरा खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो बारी सर ठोर मो हो सहाय दुष्ट दोख ते ले हो बचाई खड़ग कीत मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो बारी सर्व ठोर मो हो सहाय दुष्ट दोख ते ले हो बचाई सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम प्राण कुरान अनेक कहे मत एक ना माने ओ सिमृत शास्त्र वेद सब है बहुपेद कहें हम एक ना जाने ओ सिरियस पाण कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तो ही बखाने दोहरा सगल दोर कौ छाड़ के गए हो तोहारो द्वार बहिं गहे की लाज अस गोविंदास तोहा सगल दोर कौ छाड़ के गए हो तोहारो द्वार बहिं गहे की लाज अस गोविंदास तोहा रामकली महला तीजा अनंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता वाया सहज सेती मन वजियां वाधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावन आइया शब्द तंगा वो हरी केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब में सारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला सिमरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सचे साहेबा क्या नाही घर तेरा घर दा तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं घर तेरा सच्चा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जैना भुखा सब गवाइया करशा सुख मन है बसया जैना इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटह जिस दियाँ एह वड़ाइया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो पे आरो सचा नाम मेरा आधारो वाजे पंशव तिद घर सपागे घर सभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया
अंच दो तदवास कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिनका सेना महर के लागे कह नानक तें सुख होआ तित घर नहद बाजे आनंद सुनहौ बड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभु पाया उतरे सगल बसुरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पये सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पोनी कहते पवित सतगुर रहा भर उरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहाद तूरे सुनते पोनी कहते पवित सतगुर रहा पर उरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहाद तूरे मुंदामणि महला पंजवा थाल विच तीन वस्तु पइयो सत्य संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे अधारो जे को खावे जे को पंचाए तिसका होए उदारो एह वस्त तजी नहें जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिय सब

नानक नाम अमोले निर्गुनियार एन्या सो प्रभ सदा संभाल जिनकी आत सचित रख नानक निभी नाल दीन दर्द नवा ठाकुर राखी जन की आप तरन तारन हर निद दुख न सके ब्याप लाल गोपाल गोविंद प्रभ गैर गंभीर यथा दूसर नाही अवर को नानक बिप्रवाह आपे किया कराया आपे करने जोग नानक एको रव रहा दूसर होआ ना हो करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोए नानक तिस बलहारने जल थल मयल सोए सो कहो टल गुर सेवी है अहने सह सुपाए दर्शन परसै गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसमंदी नूर अरसों कुरसों चटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाह देशाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वैसा हो सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाह देशा हो जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वैसा हो। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी तलंग कर दूजा महला पंजवां तुद बिन दूजा नाही कोई

अगम्यागात ऊच आपारे जो तुद सेवा है तिन भव दुख नाही गुर परसाद नानक गुण गाहे जदी से सो तेरा रूप गुण निदान गोविंद अनूप सिमर सिमर सिमर जन सोए नानक करम प्राप्त हुए जिन जपया तिसको बलहार तिसके संग तारे संसार कहो नानक प्रभ लोचा पूर संत जना की बांछाओ तूर जिन जपया तिसको बलहार तिसके संग तरे संसार कहो नानक प्रभ लोचा पूर संत जना की बांछो तूर वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

कहो नानक प्रभ लोचापूर, संत जना की बांछो तूर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता।

करी कृपा सत जुग जिन ध्रुव पर, श्री प्रहलाद भगत उदरियं हस्त कमल माथे पर तरियं, अलख रूप जी लखिया ना जाई, साधक सिद्ध सगल सरनाई, गुर के बचन सत जी तारो, मानस जन्म

गुर दर्शन सफल संसार, संसार सफल गंगा गुर दर्शन, परसन परम पवित्र गते जीते जम लोक, पतित जे प्राणी हर

संसार अगम सागर तुल्हा हर नाम गुरु मुख पाया जग जन्म मरण पगा एह आई ही है परतीत परतीत ही है आई जिन जन के तिन को पदवी उच्च पई तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की वृथा गई अवलोक्या ब्रह्म परम सब छुटक्या दिव्य दृष्ट कारण करनं सतगुर गुर से अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरनं परताप सदा गुर का घट घट परगास पया जस जन के एक पढ़े सुनह गावे पर बात करे स्नान स्नान करे पर बात सुध मन गुर पूजा विद सहत करं कंचन तन होए परस परस को ज्योत स्वरूपी ध्यान तरंग जग जीवन जगन्नाथ जल थल में रहया पूर बहु विद वर्णन सतगुर गुर से अलख गत जाकी श्री रामदास तारण।

पीत बसन कुंद दसन प्रिय सैत कंठ माल मुकट सीस मोर पंख चाहे जियो बेवजीर बड़े तीर धर्म अंग अलख अगम खेल किया आपने ऊंचाए जियो अकथ कथा कथी न जाए तीन लोक रह समाय सुत सिद्ध रूप तरयो शाहन कै शाहे जियो सत साच श्री निवास आद

माने हैं ब्रह्मादिक रुद्रादिक काल का काल निरंजन जचना गुर प्रसाद पाइये परमारथ सत संगत से ती मन खचना किया खे

सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच।